0: This is Sangeet 106.1 FM. More than just music, this is us. The vibe and energy of Sangeet 106.1 FM. This is us.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: प्रिया।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: I'm not listening
1: to you। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
0: I'm not listening
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: Okay, I'm not with
1: her। तो इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it।